0: कोट परम ब्रह्मे उदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धारे हे कई कोट कब का विचारे हे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंत ज्ञानी।

0: कर सुप्रभ का रंग सदा सदा बसै हर संग
1: सहज सुभाए होवै सो होए करने हार पिछाने सोए
0: प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिस ते उपजे तस माहे समाए ओए सूखन।

0: अष्टपदी।
1: चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार,
1: आप सत सत

0: सास मारै
1: अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै
0: अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत राखै ताकि गत मित कोई ना लाखै
0: प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया नान सो सेवक दया दिस प्रगटाया
0: नीकी कीरी मैं कल राखै पसम करै।

0: जब अकार है कशना दृष्टेता पापन तब कहते होता।
1: जब धारी आपन सुन समाद ता पै क्रोध के संग मात।
0: इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरक शोक किसे व्यापत।
1: जब आपन आप पार ब्रह्म ता मोह कहा किछु होत भरम।
0: अपन के लाभ वर्ति जा नानक करने हार न दूजा।

गुरु प्यारी सात संगत जी इतनी इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी चाहिए। कीर्तन करदे हां बेअंत भुलां दी आप जी ने खिमा बख्श देनी। आओ जी हुण रोजाना की तरह साढ़े अति सत्कार योग ज्ञानी दलजीत सिंह जी पासों सतगुरु जी के लड़ीवार इतिहास प्रसंगा नूं निहाल सरवण करना करिए जी। उन्हां दी रचना द्वारा आओ जी आप जी ने सिस बख्शिश करनी फतेह गजाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सतीर, गुर सम तापत हम गंभीर, को तिन थाहो लह असतीर।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतत पावन भगत वत्सल, कृपा निदान जुग जुग अटल, चैवर शतर तक दि मालक तन सतगुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर दिन शुक्रवार दी सजी विशेष दीवान दी विच हाजरी भर के अपने जीवन का लाह खट रही सतसंगी जनों, आप जी बहुत वडभागी हो लंबे समय तो गुरु की गोद विच बैठ के आप जी ने सतगुरु जी की पवित्र गुरबाणी का जाप किया, सतगुरु जी की बाणी पढ़ी अते सुनी है। बड़े प्यार दे नाल गुरु घर दे हजूरी रागी भाई हरबख्श सिंह जी आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवा रहे सन। सो आओ हुण कुछ समा जो गुरु का इतिहास आपां सरवण करदे हां गुरु की महिमा गुरु इतिहास द्वारा सरवण करिए। पिछले दीवान में आप जी ने लड़ीवार कथा दे विच ये प्रसंग सरवण किया सी, जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी लाहौर गए ने बादशाह दे नाल सतगुरु जी की मुलाकात हुई है, बादशाह मिलने वास्ते आया है। कुछ समा सतगुरु जी इत्थे रुके ने, बादशाह गुरु की आज्ञा लैके कश्मीर वाले पास गया है। इत्थे सतगुरु जी दे वड्डे भराता बाबा मेहरबान जी पहुंचे ने। इन्हां दे बाबत जदों सतगुरु जी नूं पता लग्या साडा वड्डा भरा मेहरबान लाहौर विच बादशाह दे कोल पुकारू हो के आया है, सतगुरु जी ने भाई जेठा जी ते भाई पुराणा जी नूं इस दे पास भेजिया कि इस नूं साडे कोल लै के आओ, इनू जाके कहो कि एवं बादशाह दे कोल तुरकां दे कोल पुकारू ना होवे, इन्हां ने कुछ नहीं देना, जो कुछ भी चाहिए है तू साडे कोल आ असीं तैनू देवांगे। इतिहादक वचन कह के सतगुरु जी ने जदों इन्हां नूं भेजिया जाके सतगुरु जी वालों इन्हूं बेनती की है, पर सत संगत जी इसने एक भी गल मनी नहीं, गुरु की निंदा की है। फिर भाई पुराणा जी ने समझाया है कि जिहड़े दोष तुम गुरु दे विच लभना है ना, गुरु ने इन्हां गुणा नूं अपने जीवन का गहना बनाया है। सतगुरु साहब जी की जिहड़ी रीस है वो कोई नहीं कर सकता, वो बड़ी गंभीर ने। इत्थे तक आपां कथा सरवण कीती सी, इस तों अगे जिवें कथा आरंभ हो रही है बड़े प्यार दे नाल इस कथा नूं सरवण करिए जी।
0: अचल मीर सम कौन चलावै,
1: गौर सलता पत सम गंभीर, कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी सलता पत हुंदा है नदियां दा जो पति है समंदर

खंडल खंडा हे। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजुलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहा उसाकत हर रस, साधना जानिया तन अंतर हौ मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावहै, जिमकाल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम सुमाणे, दुख जन्म

जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। अविनाशी जीअन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गुणदान भगतन को वर्तन, विरला पावे कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सत संग जीओ, अज भाई तारू सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। सारिया संगतां नूं बहुत बहुत बधाइया होण। गुरु साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, सारिया संगतां दे सिरते अपना मेहरां भरिया हथ रखन, चढ़दियां कलां बख्शिश करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छा करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत फल पावा सोई, दुख न तसा व्याप्त कोई अड़िल। सुना गुंग जो जाहे सुरस ना पावई, सुना मूड चित लाए चित।

चौपाई को कहा चौपाई। संबत 1700 अर्ध सहस्पुन 3 कहिज्जा। भाद्रव सुदी अष्टमी रव 12 तीस सत्त